बिंद के सथैयता हीज की बटैया देत बंदरा सदीव पाए न गई फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कह सके तरत है भूत बन चार छित छौना सपे दूधा धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है त्रिण के भछैया धन लोभ के तजैयत तो गौवन के जय ब्रिक भैया मानियत है नभ के उड़ैया ताहे पंच की बटैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है जेते बड ज्ञानी तिन्नो जानी पै बखानी नाहे ऐसा न प्रपंच मन भूल अनियत है भूम के बसैयता है भूचरी गजैया कह नभ के उडैया सोच रैया कह बखानी है फल के बछैयता है बांधरी गजैया कह याद सफिरैया दत भूत के बछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के बछैया सो चकोर सम मानी है सूरज सिवैयता है कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को

नाथ गुजर गोपाल सब दिन चरि रिखि के नाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओटे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके रख रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जोगी जट्टा धारी सत्य सचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है। न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठंड न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग देव नेद नेद कह कहत है। नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करी करत है। चंद्रमा शीतल न सूर स्थित पत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जो कन की चौकरी फिर आई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार कते असुनी कुमार कते अंसावतार कते काल बस भय है। पीरे ओ पिगंबर कते गाने ना परत ते भूमि ही ते होए के फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सरद्रु जोधन से मानधारी भोग भोग भूमांत भूम में मिलत है। सिज दे कर अनेक तोप जी कपट वेश पोस दी अनेक दारी वावत है। शीस को कहा भय मल्ल जो पे काढ़त अनेक दंड सो तो न दंडोत अस डांग अथ तीस को कहा भयो रुगी जो पे डार्य रहे उर्द मुख मान तेना मुंडने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीन एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पट कत जाके कान में खजूरा धस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के सोक सौ आग को चरैया फल फूल को भचैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूक सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीजे जोक सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करियो करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न उजलीन भावना यकीन दीन कस कतरत है। जैसे एक स्वंगी कहूँ जो किया बरा की बने कब हूँ संन्यास वेश बन के दिखावई कहूँ पवन हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की घुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंड धारी हो के लोकन भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंजर उगत हा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांस बीच चीर चीर चोर टाक उठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए जो पे पायत जाप देव पूदना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बुकरत है। आग में जरत गत राण की परत कर

रहीम ओई दूसरो न भेद ओई भूल भ्रम मान बो एक ही कि सेव सब ही देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पय अनेको भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के वेश को प्रभाव है एक नैन एक कान एक देह एक बार खाक बाद आतस ओ आप को रलाव है अल्लाह अभेक सोई पुराण ओ कुरान ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे एक आग ते कनु कगोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे केते कछ मछ केते उनको करत भच केते अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे केते नव बीज अच पच को करेंगे भज के तक व्रत अच हो बचाए खाए जाहेंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे कुकत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डुबत केते आग में जरत है केते गंग बासी केते मदीना मकानी वासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है करवत सहत केते भूम में गड़त केते सुआ पे जड़त केते दुख को भरत है ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है सोध हारे देवता विरोध हारे दान बटे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चोजार बूज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मटी मट लीप हारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर साव पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी

न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नि अच्छयाद अद्वय जो हं न जन्मं न मरणं न मरणं न व्याधं न रोगं न शोकं अभैरर्विखादं अछेदं अभेदं।

कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं नेह गृह कहूं देह दुख कहूं औखदी रोग के शोक सुख कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हूं कहूं जोग विद्या धरे तापसी हूं कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हूं कहूं जक्ष विद्या धरे मानवी हूं कहूं राजसी हूं कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि के पृष्ठ

कहूँ चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्धावस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ

जात जह पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जह करम भरम नहीं धर्म ध्यान जह नेह गेह नहीं ब्योतबान जह जात पात नहीं शत्रु मित्र जह नेह गेह नहीं चिहन चित्र जह रंग रूप नहीं राग रेख जह जन्म जात नहीं भरम भेख जह करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जह नाम थाम नहीं वर्ग ब्याद जह रोग शोक नहीं शत्रु साध जह त्रास वास नहीं देह नास जह आद अंत नहीं रूप रास जह रोग शोक नहीं जोग जुगत जह त्रास आस नहीं भूम भुगत जह काल ब्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जह नेत नेत उचरंत वेद जह अलख रूप कथत कतेव जह अलख रूप आसन अडोल जह अमित तेज अक्षय अतोल जह ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत खाम परखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमंत कई ऊर्ध मध्य पावक तेव कई अग्न होत्र कई पौनहार कई कर्त कूड़ मृत को आहार कई कर्त साग पै पत्र

तीरथ तीरथ भर मत्सु भरम गई यगन होत्र कई देव करम गई गर्त वीर विद्या विचार निहित दबतास पायतन पार कहूं राज रीत कहूं जोग धरम गये सिमृत सासरत उचरत सो करम न्योली याद करम कहूं हस्त दान कहूं अश्वमेध मख को बखान कहूं गर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं बिरध चार कहूं गर्त जाछ गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ कर्म कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं गर्त शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक बग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मद देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्नि ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप

न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भोयं जे खेत न भेद न छेद छयं जेह जात न पात न मात पितं जेह रच्यं छत्री छत्र छितं जेह राग न रेख न रोग भणं जेह द्वैख न दाग न दोह गणं जेह अंडह ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखंड रचियो रज तामस तेज तेज गियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधरो बिंद न किंद नगं श्रेय जज गंधर्व पणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंग ये देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जेह तात न मात न भ्रात सुतंग जेह रोग न शोक न भोग भुवंग जेह जंप है किन्नर जाछ जुवंग नर नारन पुंसक जाह किए गण किन्नर जाछ भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांद गणंग भव भूत भवेख भवान तुवंग जेह अंडज सेतज जेह रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पौन प्रचंड बली बन जास

गाद ब्याद नाद गतंगन खेद वेद छेद नरंदेह चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जेह राग न रंग न रेख रुकंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भो भंजन गंजन आदि सरंग जेह बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जा छे भुजंग रचे मन माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रवान गंज मृतंग जेह पार न पावत पूर्ण मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जमपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जेह वेद पुराण कतेब जप सुत सिंधु दो मुख ताप तप कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नैग कृपा निध पान पर जय फोगड़ धर्म सभा तज है एक चित्त कृपा निध को जप है ते या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति एम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के

सन कौ सन के नंदन पाव ही न सेव जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार ही शिव शुक्र ओ मुखचार सर्व सबत बतार के तर जाप ही जह जाप आद देव गाद तेज नाद मूरत अताप जंत्र मंत्र न आवई।

सर्व ठौर रहियो बिराज धीराज राज प्रवीण जछ गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे वैसनंके बिखे बिराज सूत्र भी वह नाहे गूढ़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मध उर्ध न भूम आकाश अनूप जाल जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के नाधीन सर्व सपत पतार के दर जानिए जह जोत शेष नाम सहंस फन नह नेत पूरन होत सोत सोत हटे सभय सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब पड़त पड़त हके महागम गढ़त गाढ़ अनंत हार हार कहो सभु मिल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो।

देव देव गंधर्व किन्नर माछ कछ अपार भूमा काज लेथले मेहमानिये जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ।

दुष्ट हरणं गुष्ट करणं सर्व के व्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुक्ता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्वहर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड भूमा का चेथले मह जबत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार चेते जानिए सब चार आदि देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावई शिव रुद्र ओमुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भेव मुख चार आद अंत न मध जाको भूत भव भवान सत द्वापर तृतीया कलयुग चतुर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाई ये देह पार नारद आदक वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोध सोध थके महासुर

प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा। को आत्मा स्वरूप है कहाँ श्रेष्ठ को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मरण है कवन सुरक कह नरक, को सुगुड़ा को मूढ़ता कहाँ तरक अवतरक दोहरा। को निंदा जस है

कवन सृष्ट को भ्रष्ट है, कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है, कहाँ भ्रम को नाश। कहाँ चेतन की चेष्टा, कहाँ चेत प्रकाश दोहरा।

आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्टि उदंडन रूप ते जंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदुंसन महक मथे दान प्रहार।

सुर मर्दन भरम विनाशन धरम तुझे। घुंगरू घमंगण शास्त्र झमंगण फणियर फुंकारण धरम तुझे। अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष प्रणासन चक्र गति केसरी प्रवाहे सुध सन्नाहे अगमथा हे एक वृते। जय जय ओसे मखासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते। सुर नर मुन बंदन

संकटे निवारण धम उधारण तेज प्रकर खंड धुंध तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद गाद छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो श्री शस्त्र प्रकर खण आद नील गाद भे चंचला जगहंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर।

नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद कते बना भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमा पद से दसनाद सनंदन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद निरपान सब है बजहारे। भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाध अवेख अद्वेग जप्यो दिन ही गुलतारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देज फिरो कर भेष तपोधन के सरे न बिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुहकारे। दीन दयाल काल भजे विनांत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया महामान के बढ़ैया। अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया और विरुद्ध के मिटैया। महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध दा के दाता देव। काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमाल ध्यावे। गोर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साध पौन साधना की तेग बांधे। अरब के अरबी अराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने। पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेले तेरी मन सो तपस्या करे। दृढ़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंग मांग देश के मंगेले वीर। बंग से बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीस न्याव। तिब्बते ध्याए दुख देह के दलत है। जिन्हें तोह ध्यायो तिन पूर्ण प्रताप पायो। सर्व धन धाम फल फूल सं फलत है। देव देव दान को सुरेश दानवान को महेश। गंग दान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण। और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है। पाइये न पार दे जपुंज मैं अपार। सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचत दाहे। चीट की जिंघार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार। किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते सस राशि किते सूरज प्रकाशी। किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन केते ब्यासे प्रवीण। केते कुमेर कुलीन केते जश कहियत है। करते हैं विचार पैना पूर्ण को पावे पार। दाहित अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार। पाइये न पार पै अपार के बखानी है। अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी। महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानिए। जंत्र हूँ न जात जा के बाप हूँ न मायदा के। पूर्ण प्रभा की सोचा के अन मानिए। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के। मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानिए। तेज हूँ को तार है के राजसी को सर है के। शुद्धता को घर है विरक्तता के बान है के। बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के। भूपन को भूप है के। रूप हूँ को रूप है। कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को गारक है। साधन को रचक है गुणन को उपहार है। सिद्ध को स्वरूप है।

जान को बचैया है, ईमान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, केसर है, नर है, विश्व को भरण है, के आपदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई ये न पार पारावार हूं को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय का वह बसी हल विधा पूर्वी न

सिद्धता को हर है कि सिद्धता के साथे है कि काल है कुचाल के। छीर कैसे छीरावत छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसे छप काल इंद्र के गोल के। हंसनी से सिहारो मही रसी हुसैनाबाद गंगा कैसे धार चली सातो सिंध रूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सोरसी सुरंगाबाद नी के रही झूल के। चंपा सी चंदेरी गोल चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारे रही मालती सी फूल के। फटक सी गलाज कमाऊ गढ़ कांसी पूर सी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है। हिमा से हिमालय हर हार सी हलबा ने रहंस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधार मकान सी बिलंदवाद कीरत तिहारी के उजियारी मोह सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है। भकरी कंधारी गोर गखरी गुरदे जाचारी पवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं विराजे जहां।

0: खून चूसते हैं यह काश्तकारी जड़े हैं उन्होंने मार कुट के समझ लियो 100% दे विच चलो अद्धा भी दे दिता तो ठीक है 75% रख लेना 20-25% देना कितों का इंसाफ है कहिंदे के चलो ये जड़े बेईमान पापी हैं उन्होंने आप लुटीए
1: मानव जाए बुलाव है
0: इन्होंने कहा कि भाई ये सारे बंदे उन्होंने कहा साडा साथ दियो असी इत्थे क्रांति लैके आवांगे तुहाडी जमीन तुहाडे नां दे उत्ते लावांगे
1: स्थल नर तब है
0: उस वेले बहुत

सब थाई होए सहाय। चार साहब जादे साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी।

भूल चूक माफ करना पड़ी सुनी बाणी सचखंड मैं प्रवान करनी आइया समूह संगता दी हाजरी प्रवान करनी यात्रा सफली करनी सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहेवंद।

चिकन कढ़ाए बेकार भैव की धरती दबी भा भैव चिन्ह फ्रैशर भा भैव च राजा धर्म द्वार भैव सूरज भैव चंद कहो करोड़ी चलत न अन्न भैव सुध बुध सुरनाद भैव च आडाने आका भैव जोध महाबल सूर भैव च आवे जावे पूर सगलिया पौल

मन का सुतक लोभ है जेवा सुतक कूर अखी सुतक वेखना प्रत्रिया प्रधंडू कन्नित वेखन।